0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनाइबाट आउँछ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम धन्यवाद बिहानी।
1: यो समय हो धन्यवाद बिहानी।

Good News FM 105.1 MHz. अब प्रस्तुत हुँदैछ कार्यक्रम आत्मिक यात्रा।

माली जी व मनुते त ध्या मालीला जित क्षमायाना दिस तर थौ जीगु प्रार्थना परमेश्वर मता अवश्य नमखो उगु अवस्था जी छुयामा धासा उम मनुया आवश्यकताया नीति विश्वासपूर्वक व मौन रूपमा परमेश्वर के प्रार्थना याना चुनी गुख कलसी छगु अध्याय गुगु पद के धातगुदु ठोख न्यसानी से पवित्र आत्मा यो बुद्धि छिमके परम प्रभु यागु इच्छा बालक सिके थुके फेमा तका चिमस प्रार्थना याना चुनु गुदु ठन प्रार्थना या प्रतिबद्धता या त ध्यान बिहादिसो थो मधा जिगु जी छिगु नीति जक्क प्रार्थना या अले जी मेगु छु ख न्यने उने बरु वाल जिमस छिमगु नीति प्रार्थना या त तोता गु मधु जीवन या छुन अझ पुगे त अधिकता छगु महत्वपूर्ण ख अले विशेष याना छिगु जीवन या नीति परमेश्वर पाखे छु आशा याइगु धैगु ख वै बले छिगु उगु खया बारे प्रार्थना यामा अले गुली अप्प आवश्यकता जुई उली हे उगु विशेष खया नीति चिस प्रार्थना ध्यान व कुतयामा यो पिनियन मेपी आज प्रार्थना या विषय के दु थो थुके मागुदु कि गुबले गुबले परमेश्वर जीगु प्रार्थना या लिस मव्यूसा झीस गलत ख फनाचुन गुजुफु झीस थुके माकी जीगु स्वया परमेश्वर या बुद्धि युक्कु हे त नापाङ्गु कोरन्थी छगु अध्याय निन्यागु पत्के धातगुदु जीगु जीवने नापाङ्गु कोरन्थी छगु अध्याय निन्यागु पत्के धातगुदु परमेश्वर याको मूर्ख ख मनुतेगु ज्ञान स्वया तहत अले परमेश्वर याको कमजोरी मनुतेगु बल स्वया तस्क बल्ला जीगु जीवने मागु वस्तु या परिणाम मखनी बोले झिस झिगु इनापा या त मूल्याङ्कन न्यायमा परमेश्वर झिगु नीति मागु प्याछिगु ख झिस फनाचुनगु खला सम्भव दुखी झिस छु विशिष्ट ख फनाचुनगु जुइफु तर परमेश्वर झिगु नीति यक्कु बालागु मेगु छु दुधका सुगु जुइफु अझ कि यदि छि बिहा मजुसा छि छम निश्चित मनु या त मथिना याना इपा याय त परमेश्वर प्रार्थना याना चुङ्गुदु दुसा छि लक्षित याना चोम मनु स्वयान भाला मनु या त इपा या त परमेश्वर मने तया त गुजुइफु थो जुइफु कि छिगु निश्चित याया नीति परमेश्वर प्रार्थना याना चुङ्गुदु अले परमेश्वर के छिगु नीति मेगु झ्यादु गुब्ले गुब्ले झिस परमेश्वर या निहने थ त विनम्र यामा अले झि त छुमा धका वेकल सिउ धका थुइकेमा अले झिस विचार याना गु स्वया तस्क हे फरक ख धका थुइकेमा एफिसी खुगु अध्याय झिन्झ्यागु पत्के धातगुदु याबले छिम्स पवित्र आत्मा यागु शक्तिका प्रार्थना या अले परमेश्वर यागु गुहारी फु होसियारजु अले न्याख्यसा चोपी विश्वासी तेगु नीति मत्तिका प्रार्थना या यो पिनियन मिपी प्रार्थना दैगु तस्क शक्तिशाली व अजुज आइपुगु ज्याब ख गुगु परमेश्वर झित ब्यादि गुख गुकियाना झिस वैक चाहे जुगु फुक्क प्राप्त या फै तर थुपी प्राप्त या त झिस छु प्रार्थना या नाचुना दैगु ख स्पष्ट जुइमा अले झिगु प्रार्थना या लिस मवतले झिस गब्ले न हार स्वीकार याय मजु थौयागु वचन याना दिगुनि छि सकसित न परमेश्वर सुव्याबीमा जय मसी मेपी छिम्स नकतिन हे जक बाइबलिया प्रभावशाली शिक्षक व आत्मिकी लपु केनादिम सोमन भिक्टर चोयादिगो हसना जिगु हे नेपाल भाषाया रेडियो ज्याजो स्पार्क माई फेट जिगु विश्वास के चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिमके जिमगु मोबाइल नम्बर दु 9868553349 9868553349 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकुए सुब्या परमेश्वर छित सवाबीमा जय मसी।